के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देख कुल गावे तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देख कुल गावे तेरा नाम है दुख दुख सद पौन सद लंग तिक बद

लेकिन पड़े पिता कड़े बोते सोए ते तुम्हारे बोते किया दे दुखिया सोए किया तुम्हें अन्न खाया सर दोए बोत पाया तुझे पाया बस मैं तेरे उसके मन भूता क्यों जागे दूंगा कदू पिता आत्मा किया तुम्हारा अन्न खाई तुम चाही पाई मुर धंधे पकवाई विनाय किसान पाई रे वाणी वड़ किसान समझ बिटे दुख

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे

मत भूले। कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे। कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो, कहूं

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: मल्ला पहला गो ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन नारायण पोतिन काते जमाली तन में सखाई मंत्र पूजा प्रकृति बस समुद्र का पाई छोटिले पखंडा नाय लिए जय त्रंदा
1: मांस खाने करे निवाज।

है पंडो में दोस्ती पन चलेरा पंडमुआ पंडालिया पने बंदा सोख मंदा खेत राजा पंडो ही पंडो के पंडे बाग ना कोई ना पंडे वारा कुछ जा सोई।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण पखार करम गुर सेवा बार जाओ लख परिया। जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्ना निक पैसलिया।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगिस करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रो के रुगेले मग देश के बंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे।

इन पूर्ण प्रताप पाए सर्व धन ताम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया।

लाख खुशियां बादशाहियां ये सतगुरु नजर करे। आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड। He who is destined enters the Lord's castle through the Guru's grace. Mind you, O my mind, the one and one alone. Without him, all else is waste, illusion, maya, and false love. One enjoys myriads of joys, one is a king if the Lord's grace be upon him.

सत्संग इस शब्द भक्त रविदास जी का उच्चारण किया हुआ है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत रविदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंद्र साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही केंद्र ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन की शुरुआत हो जाती है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करती है ओ ब्लूम करती है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संघ है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंने हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसे ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसे वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं। मेरे नाल किसे ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साड़िया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं ते तो भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं ये सारे द सारे फौरन पाड़ सटे, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसको सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।

हाँ क्या सलाही किरभजन। हे मेरे साईं, ए जीव तेरी की उपमा कर सकता है। मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही किरभजन, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। ए गरीब नवाज, मेरा तो आसरा ही तू है, मेरे जीवन का सहारा ही तू। मेहरबान साईं, मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद विच गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप का पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तो बुढ़ेपा आ गया। ए मेरे दाता, हुण तो कंबी दा बरूटड़ा, हां पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता, मैनू दर्शन दे। दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंगत राय बुलार आखो श्री वाहे। राय बुलार, ओ राय बुलार, राय पवे तलवंडी दा मालिक, पहली वेरी गुरु नानक नु वेख्या गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहा है बार खूह ते बैठा है, नौकर ने चौकी बिछाई है उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पे कर। हे मेरे दाता, आ मैनु दर्शन दे, अखां चो अथरू डिग दे, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पहंदे, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे। रोंदे अखां दियां सिपियां चो प्यार दे सोची सुचे मोती डुल रहे, ते अरदास करदा कि आवा पां करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहा है, हे निरंकार धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 साल का विछोड़ा किवें सहारिया जा सकता है। आओ दर्शन, अखां वस रही हैं ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक बोले।

अरे दात मंगो आज पूर्णमासी दा ए समाते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रा च विसाओ हिरदे ते विसाओ अज राय बुलार अरदास पिया कर रहा है आओ जिसने धरती नु पुटे ओनू पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनू मालिक लभा है ते जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए सारे आओ प्यारी साध संगत अज दा ए समा ए रात खास बख्शिश वाली है की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्यम तो करो ओ केड़ा उद्यम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नू बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जाना है राय बुलार रो

पिताजी मेरे निरंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सर जावन ए हाथ जिना थां नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

की कह दी है, जहां भी जा निकलता हूँ यही कहती मुझे खलकती, वो देखो आया दीवाना।

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे कारुच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन स्नान किया, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैन दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैन वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाड़ा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह। हजूर कहन लगे हां मरदाने यार तारा भी कई तरह दियां हैं, एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइला बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है, तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा ओ ही दस दो तो मेरे सदगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदानिया नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भाई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पै जांदा आखो सही वारी। पर मरदाना काला है, 12 सालां तो बाद घर आया है, एड़ा कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करदे सन कि भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नूं कहा मरदाने ए पढ़ की